to weather. And when they test the pumps of guns on the last issue, what is on this big battery in the last one? I can't talk to the war. Also, in front of the Gazan, I've got some money on the phone. Exactement, c'est ce qui est avec nous. On se retrouve dans la maison, on se retrouve dans la maison, on se retrouve dans la maison, on se retrouve dans la maison, on se retrouve dans la maison, on se retrouve dans la maison, on se retrouve dans la maison, on se retrouve dans मेरो अनुभव अनुसार अपने परिवर्तनशील सियासी अक्षों पर टाइस अंतर्गत तारोंसी सियासी अक्षों पर टाइस अंतर्गत 27 उन्नतीस के तारीस हो मैं एक पक्षीवाद में रोका वस्ते दिन मना आस्था देगा

0: संस्था लिमिटेड हो। रेडियो अनुभव एवं प्रसार कार्यक्रम जनहित जारी सन्देश
1: भविष्य प्रति चिंता
0: मेरे संतान भविष्य को सहारा

पास करता है। एक से एक दिन को कार्यालय मसाला मिश्र अनुरोध सार्वजनिक यातायात में सीसीटीवी जगानलाई अनिवार्य गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ राज सुवेदीले सीआईएमसँग बताउनुभयो।

स्वीकार करने को बताई हो, यदि कोई पक्ष ही प्रस्ताव जवाब को विस्तृत विवरण नहीं किसी समय सार्वजनिक अमेरिकी प्रस्ताव के ईरान को आरोपी का मौका कम चुनाव के लिए

Selama lebih besar. Bapak Syekh Mazhar, Rasul Yesus satu bazir atau besan azab di suruh lebih besar. Sarkar kuniti ayam punya azab prostut me sun sabtu di dalam rencana itu. Rasul Pati Ramzan tak boleh le. Sun ke sun sabtu kasih untuk bayi sahun kusami tak boleh tak bayi sun bodun kerana ayam lebih besar. Rasul Pati boleh le. Azab plan saat bazir sarkar kuniti itu tak ayam prostut kerana masih parit sabit kerana sunnet sabtu di dalam आज के संसदीय बजट प्रतिनिधि सभा राष्ट्रीय सभा का बैठक शुरू होने वाली है। संसद सचिव के प्रतिनिधि सभा को बैठक में राष्ट्रपति द्वारा अधिवेशन आह्वान संबंधी पत्र के बारे में जानकारी दी है। मंत्रिपरिषद के क्षेत्र संबंधी राष्ट्रपति को कार्यालय बैठक प्राप्त सूचना बारे सदन में अवगत कराने संबंधी सूची रहेको जनाएको हो। त्यस्तै सभामुख उपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन प्रतिनिधि सभाले महली 2009 नियम 260 बमोजिम जारी गरेको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेश हुनेछ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको मस्यौदा पेश हुन लगायत लगायतका कार्यसूची पनि रहेको छ। त्यसै गरी सरकारबाट जारी भएका विभिन्न आठ

0: से सब लोग के सजीवन के लिए मेरे विवाद के तरह ये कोई यहाँ ऐसा था कि जो रास्ते यहाँ सिटी पर भी रास्ता नहीं है मैं ही फिर हूँ या बढ़िया चीज हूँ
1: रेडियो कुमार 107 मेगाहर्ट्ज़

0: पत्रकार नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी के पत्रकार घटी मेविलिक स्वास्थ्य सेवा में समस्या रूप में दिखे यहाँ कुल स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक प्रवता करे ऐसी औषधि अस्पताल भास्करी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध करती
1: अस्पताल से देना सेवा
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से क्या छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करेगा
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़ी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न लैब को सेवा उपलब्ध भा पैरालाइस शिशु को मुंह बांध देना नशा का गोला हाथ द्वारा निकलना बिरमी उपन फिजियोथेरापी तथा एक थेरापी विधि से उपचार कई था
0: नशा तब्दील बिरमी उपन के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एक उपजन थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी असहाय नागरिक एक महिला अनाथ बाल बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक गणपूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगी कोशिश अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा पांच बांसगढ़ी बर्दिया प्राण पेट्रोल पंप दक्षिण पाजर
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय फोन 11 पेपर 14 नंबर

0: इसके प्रेरणा से चलता है संस्थापक को खुले नाटक प्रकार राजू भाई के ही अपने सघन विभागक मेला बाटा व्यवस्थापन समिति गठन होने यही समिति बाटा शिक्षक को प्रपूर्ति करने संस्थापक को रूप में जिम्मेवारी दीने और अभिभावक को गुनासो सुने और समस्या हल करेंगे
1: आपने यातायात को राम सुविधा
0: देखिए आठ कक्षा सम्भव।

0: के पास ये वो रेडियो गुरु है जो पुराने के पूरा स्थान पे खड़ा है। ये तो मेरा इतिहास है। अब हमने महिला सचिवों के पालन करने का इसकी सीमा धीरे गर्मी लगातार दूध उत्पादन में कमी आने उच्च जोखिम पूछाई और साफ से उच्च तापक्रम के कारण दूध उत्पादन प्रति आमदनी और दूध क्रम सचिव
1: हजार को यही जोखिम है तो मतलब स्वास्थ्य चेक को सहायता देना सटीक इंश्योरेंस का आधुनिक पद्धति पर आधारित है बिना कोई झंझट बीमा करना और बिना कोई कागज उठाई जाति प्रदान करने व्यवस्था लिया
0: बजाय हमारे यहाँ

0: sepatu, kita ingin kalau saya bisa berkesan, kalau kita tidak diundangkan, kalau kita investi, kalau soalnya kalau berhasil semua lebih gentis, kita pergi ke dasar kita berkhidmat dulu. Orang sebisa berkesan, kita sampai satu pun. Bisa kesusilaan untuk asalnya, awalnya tidak terdengar semua hari, awalnya tidak terdengar terkadang, tapi boleh sebab dua hari, mana pada yang mana pada yang dibilang dia, tidak terpisah dia, ada yang mungkin panas panasan lagi, awalnya tidak terdengar semua hari semua. और जैसा कि आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बताया कि इस समय आप लोगों को बता 1928 अठानबे साल 86 128 अठानबे 20 27 29 41 हो मलाई एकपटक सेवा गर्ने भौका अवश्य दिनु मलाई हस्त धन्यवाद
1: आफ्नो भाषा आफ्नो समावेशी रेडियो पुरस्कार जवाब

संतुलित खाना खाई, व्यायाम शब्द करी, धूम्रपान नगरा बस्ने दूर रही, भन नियन्त्रण करी, आज निर्णय कार्य जीवन रचना, निसर्गमा रोगमा बाँची स्वस्थ जीवन अपनाई, हाम्रो गुरुबाबाको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहितमा जारी सन्देश।

0: हाथी का नोट करती अस्पताल से दे देना सेवा
1: चौबीसे घंटा डॉक्टर के पद से निगरानी में उपचार करा जाए
0: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच करा
1: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
0: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब सेवा उपलब्ध भा प्यारालाइसिसको भूभाग बिना नशा दाब बुलक हाट द्वारा अनि चलना बेरमेला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि बसे उपचार कैदेखा
1: नशा दाब बिलक बिरामी हुँदै बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्सर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
0: 24 घंटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएका असहाय नागरिक एक महिना अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक हुन सेवा

0: अच्छा सा अब हमने महिला फसलों के पालन करने का इस इस्तेमाल करें घर में लगा था दूध उत्पादन में कमी हमने उच्च घुसरी और साफ प्रशासन से उच्च तापक्रम को कारण दूध उत्पादन घटी आमदानी और खत्म सक्षरी
1: त्यसैले हजुरको यही जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै ग्राम चयनको सहकारीमा सडीको इन्सुरेन्समा आधुनिक पद्धतिमा आधारित भई बिना कुनै झन्झट बिमा गर्न र बिना कुनै कागजीलाई जाति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेका छौँ। बिमा छैन भने जोखिम छ, बिमा छ भने भरोसा छ। सुरक्षा आजदेखि भरोसा सडीको इन्सुरेन्स।

साथ बिहार यात्रा समझी और श्रीनगर बालिका पर किया और प्रॉपर्टी जाएंगे उद्योग बजार दफा राष्ट्र स्थापना जितने किसी का विचार मन से पहुंचे हम प्रॉपर्टी जाएंगे उद्योग बाजार

0: से बचा जाए छाता नदी प्रकार छपेंगे वैसे जाए पानी पी शरीर में चूक धर जाए मौसमी सब्जी खाई हर स्कूल के साथ जुड़ा बनेगा
1: फिलहाल इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप के साझेदारी पटिया जिला में संचालन हुई हर विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाभ जारी

स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिबद्धता, नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे प्रतिबद्धता घटी, नागरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्मार्ट रूप में वृद्धि अली यहाँ कल को स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तौर पर करने से कौशल्य अस्पताल खास करी में

0: की वर्षा लगायत का क्षेत्र में सातों से कम वर्षा होने प्रक्षेपण करूंगा। सामान्य भाषा में बुझाने कौन बरस पानी समय में पड़ना देर छेटी फेरी बिना और सुखा के निपुण अवस्था में किसान ठिक्क पानी परल करना कर ये अवस्था में सरदर वर्षा पाई जाए तर ये बरस कुल वर्षा का मात्रा औसत से कम विषय में अनुमान देगा। शब्द पानी निपुण प्रणाली हो कतिपय ठाउँमा भारी पानी थे पर जगत प्रदान समग्रमा पानी कम पर्ना सुखा दिन पहना हो वर्षा नियमित निविध सम्भावना ढेर रहनाकरण बर्तियाको गुणले नगरपालिका बाह्र बिक्री गाउँ तुलसीराम थारू बिक्री गद्य महिना बैहालमा तथा जैविक तटबन्ध बहानको आफ्नो गाउँ बचै नपाएको बारेमा असिक सुनै छ।
1: उपाय करना हो नहीं सकता से हम लोग अपन घर को प्रशिक्षित है 24 घंटा समय को किसी चीज का तार का भाव ना दिया जो तो अपन इंसान इस तरीके को भर कर चाहे को पर बैठ कर के करता है रात को भी कोनो किस रात को हम लोग बांगे फिर लेते हैं शाकल प्रयास सब कुछ आप करते हैं।

विश्व भर का रोटरी फ्रेंड्स एवं पार्टनर क्लब द्वारा जनहित का लागी प्रस्तुत संदेश

जय बाबा। संध्या सवा छ बजे हमारा संदेश महात्मा वाला स्वागत बाबू कुमार उत्पादित हमारा संदेश कर दिया कर साथ ही एफ एम गाजापुर बांधी का रेडियो प्रतिबोध एफ एम कोहलपुर रेडियो हाथे मालू जानकी का पालिका माध्यमों से प्रसन्न प्रसारण होने के बाद हमारा संदेश का पूरी दाही मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मसे बांसुरी मे हिम सुकुम पासी पस्ती हटे में सूचना तालिका नगर प्रमुख विज्ञापन पत्र राजापुर शिक्षक हुकम समावेशी शिक्षा शैली संबंधी कार्य बंद कार्य अतिक्रमण खाली करना सूचना विरुद्ध पर दिया का सुकुम वार्षिक प्रदर्शन कोहलपुर में 108 घर द्वारा हटा गिर 54 परिवार होल्डिंग सेंटर में और सबको आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्फत आबद्ध करना सरकार की नीति वन क्षेत्र में सुकुम्बास बस्ती हटैना डिविजन वन कार्यालय प्रक्रिया को प्रमुख दिने सूचना फिर हमारा कल्पी भूमि अधिकार तथा सैनिक संगठन नेपाल संघर्ष समिति नगर समिति बांसोड़ी नगर प्रमुख बहादुर भटकाना पांच विज्ञापन पत्र शेरवा डिविजन वन कार्यालय प्रक्रिया बैशाख 14 गते जारी कर 15 दिन सूचना में वन क्षेत्र में निर्माण कई घर तहरा तथा खेती पाती हटना निर्देशन देहर पार्षद जिला का भूमिहीन सुकुम्बासी तथा उपस्थित बसोवासी ट्रस्ट 15 गते समिति बांसवाड़ी नगर पालिका क्षेत्र मार्फत जिला प्रशासन बांसवाड़ी नगर पालिका मार्फत जिला प्रशासन कार्यालय में प्रधान आकर्षण पैदा कोठियार घाट महाजर चौक संगम बस्ती खुरखुरे तारा राम बस्ती तथा अमर महिला सामुदायिक वन आस पास का क्षेत्र मनम्मा समय से बसोवास तेरह नारी कुकन हटैना प्रयास तत्काल आक्रमण पेजुका समिति भूमि एन 2021 का आठौ संशोधन अनुसार भूमिहीन दलित सुकुम्बासी व्यवस्थित बसोवासी बसोवास प्रतिरोधक ठाउँ में व्यवस्थापन करना महाकर्मबाट संघ बल एन 2076 तथा 51 सम्बन्धी एन संशोधन गरेका परिणत होशियार बस्ती कानून मान्यता डेरा उल्लेख गरेकी ज्ञापन पत्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग तिब्बत अध्यय लगायत नगर संकलन नापसाज तथा लाल पूर्जा वितरण प्रक्रिया चर्चा आग बनाए आर्थिक व्यक्तिगत समाधिता भारतीय राष्ट्रीय निकुंज का मध्यवर्ती क्षेत्र में पर्ना चेपांग चिसा पानी नाचा बेतहानी अमैया अश्मेरीको भूमि लगायतका गाउँमा 2028 सदस्य बसोबास गर्दै पहिला भूमि तथा व्यवस्थित बसोबासी कन स्थापित गर यी पहिला समिति कार्यहरूमा ज्ञापन पत्र गोष्ठी पास गरे कन्नगर प्रमुख बहादुर खड्का वास्तविक भूमिहीन दलित सुकुम्बासी हो व्यवस्थित बसोबासी कर निष्पक्ष छानबिनका समस्या समाधान गर्न पत्रबाट उहाँ वास्तविक सुकुम्बासी न्याय पाइपर्न कनामा नगरपालिका तीर्थ उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा अधिकार दिनसै वास्तविक सुकुम्बासीका परिचालन गरेका लाल पूजा वितरण प्रशेखना थाना दौडा नगर प्रमुख खड्का नेपाल सरकार पहिला निष्पक्ष छानबिन गर पर्न वास्तविक सुकुम्बासी छुट्याइ पर्न तथा पुस्तौ से बसोबास गर्दै लग्नाले उपर अन्याय पीडा प्रक्रियाबाट उहाँ घरबारदेखि नागरिक उपर दोजर चलैन कैख समाधान नागरिकका सुरक्षा गर्न सरकारका दायित्वलाई केही स्पष्ट पर्नुभएको या बीच भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका जिल्ला सहसचिव सुरवीर विकल जिल्ला अध्यक्ष रामी डुकी तथा टिका तथा संयुक्त संघर्ष समितिका जिल्ला सल्लाहकार भक्त बहादुर टिका वन कार्यालयका 15 दिने सूचना तत्काल उहाँको प्रणाम बसोबास सुनिश्चित व्यवस्था सरकार से महाकलबाट यदि उचित बासुवेद से अपना अपना कला आन्दोलन मोर्चामा समेत चेतावनी दिनबाट संयुक्त संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समिति बासुरी बजारका किसान चोकमा से व्यादी निकालका नगरपालिकामा पुग्नको
विधानसभामा परिणत गर्ने नगर प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बसाइएको हो। भर्खर राजापुर नगरपालिकामा शिक्षक र लैङ्गिक रूपान्तरणका समावेशी शिक्षण श्रेणी तथा कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी दृष्टिगत तालिम लिएका बाँकी युनेस्को प्लान इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालन कै जिल्लाको सुरक्षा परियोजना अन्तर्गत योजना प्रमुख तालिम परियोजना अन्तर्गत विद्यालयका एक्काइसमा शिक्षकगणको सहभागिता तथा तालिमको उद्देश्य विद्यालयमा सुरक्षित समावेशी बालमैत्री तथा लैङ्गिक उत्तरदायी सिकाइत वातावरण निर्माणद्वारा शिक्षकगणको ज्ञान दृष्टिकोण व्यवहारिक सिप अभिवृद्धि गर्न आयोजन समारोहका उद्घाटन कार्यक्रममा बाँके युनेस्को क्लबको परियोजना संयोजक तथा उप कार्यकारी निर्देशक गोविन्द प्रसाद रामिछाने सबको बाल बालिका समाज सिकाइका अवसर पैदा लैङ्गिक मैत्री हो समावेशी विद्यालय वातावरण आवश्यक बटुलबाट तालिममा कृष्ण प्रसाद पाण्डे ईश्वर विकब मनोज पौडेल सहजीकरण गरेर

0: ఇష్టోత్తర పదాధికారి నిర్దేశక్ రవీంద్ర ఖాన్ సాంధ్యాతి రాజ సమూహ కార్య అంతర్జీయ ఏక భూమికా నిర్వాహకు రేడియో ప్రస్తుతీకరణ మార్ఫత్ సంచాలన తెలియదా నింపాచ సహభాగ్య శిక్షక మాతం విద్యాలయమా సమావేశ దళిత నిర్దేశికాయ పాత్రక నిర్మాణ విద్యాలయ స్తరీయ కార్యయోజనా సమే త్రయాల పర్వాచ సహభాగ్య శిక్షక అసీన్ తాలిమే గుణస్తరీయ తథా సమావేశ శిక్షా పర్వ భవన్ మహత్వపూర్ణ యోగదాన త్వైన విశ్వాస్పేక్త పర్వాచ कार्यालय से जारी कर अतिक्रमण खारिज करना सूचना फिरता लेना वहाँ प्रतिबद्धहीन सुकुमदास से प्रदर्शन करवा संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समिति बर्दिया का आह्वान में आज जिला कक्षीय स्थानीय तह प्रदर्शन कर रखे वहां पर डिवीजन वन कार्यालय से बैशाख 14 में जारी कर 15 दिनिया सूचना फिरता लेना मांग करवा वन कार्यालय का जारी कर अतिक्रमित क्षेत्र खाली कर 15 जिला सूचना का ज्ञात आज निम्चा संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समिति का आयोजन उक्त कन्हैया भूमि अधिकार संघर्ष समिति भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल अखिल नेपाल सुकुम्बासु संगठन राष्ट्रीय भूमि अधिकार मंच का संयुक्त रूप में कल 14 सुकुम्बासी को उक्त कन्हैया का सहभागी भूमिहीन दलित सुकुम्बासी को अव्यवस्थित बसोबासी का बसोबास कर व्यवस्थापन कर भद्याका भयातार गाउँपालिका साथ फुलपुरका ईश्वरी प्रसाद थारू बारीमा ग्रहला र जन्ममा खरफुजा सेफर्दा 2046 साल से व्यवसायिक तरकारी खेतीमा लगमा अब गाउँको सफल र नमुना किसानका रूपमा छिन्छ श्री किसान ईश्वरी प्रसाद थारूका सफलताका कथा सन्तरी आम स्थान से
1: बरिदल गांव पालिका साथ फूलपति ईश्वरी प्रसाद थारू के बहनी के आजकल अपने बारी में काम करते तिहार बा लंबा समय जी से तरकारी खेती में काम करती रही किशोरी अपने तरबूजा खेती के लिए व्यवसायिक रूप में विस्तार कर तिहार बाते

ईश्वर प्रसाद ठाकुर बसा पन्ना कट्ठा में तरबूज की टीकर लगाई इसे करीब 150 क्विंटल उत्पादन हुए महाक अनुमान उत्पादन हुए खरबूजा बजार तैयार शुरू हो सकल बा व्यापारी कोई बारी में आके खरीद बिक्री करती रह बाकी

0: ऐसा करने वाले अपनी मेहनत से लगातार लाठी लाठी में बोरिंग स्कूल पढ़ाने के संगे भारत हाथ से चलाई लड़की को आगे हाथ मुख्य जोड़े हुए ईश्वर प्रसाद ठान के जाने में सफलता ले किसी में भविष्य को अन्य युवाओं का जिला एक बर्बाद प्रेरणा देता अनुष्ठान बुलावे फिल्म दर्शनी को दिया
1: बाटिका कमलपुर नगर पालिका नगर विकास समिति का सरकार के कर्मचारी घर बना के घर पहरा हटेन अभियान हमला निरंतर प्रतिलंबा कमलपुर नगर पालिका 11 स्थित नगर विकास समिति का करीब 36 बीघा क्षेत्रफल में निर्माण कई कीमत 108 घर पहरा योजना लगाकर तैनात नगर पालिका समय हमला नगर प्रभारी प्रमुख तेज बहादुर थापा के अनुसार दुई ठोजल पर लेकर खाली करा तिलक संरचना के लेकर प्रस्ताव तिलक काम क्षेत्र में 40 घर द्वारा हटा दिया नगर पालिका वैशाख 16 गते 10 दिन अल्टीमेटम जारी करके अतिक्रमित क्षेत्र खाली करा अधिकरण आम नागरिकों को अपना आपन सामान सरकार संरचना खाली कर नगर पालिका का कहेगा विस्थापित परिवार का नगर पालिका अस्थायी बसोबास समेत होल्डिंग सेंटर पर व्यवस्था समेत करेगा हाल 45 हाल 54 परिवार पर 208 जना नागरिक होल्डिंग सेंटर 93 जना करता यह सार्वजनिक तथा सरकारी चक्कर में बसोबास करते वास्तविक भूमिहीन दलित सुकुमवासी का परिचय प्रक्रिया है आज अपराधिल नगर पालिका के अनुसार हालसम 109 परिवार का भूमिहीन दलित 74 घर परिवार भूमिहीन सुकुमवासी का रूप में परिचय मिलक जना के राष्ट्रीय समाचार को पाया आगामी आर्थिक वर्ष का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करके राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल देश का अर्थतंत्र में आधुनिक पारदर्शी प्रविधि मैत्री बनाने योजना आगा साधनबाट सरकार 2083-84 का नीति तथा कार्यक्रम में ऐना वर्ष डिजिटल अर्थतंत्र का विकास विस्तार हो राजस्व हालत नियंत्रण में मुख्य प्राथमिकता में ठहरेगा सबको आर्थिक कारोबार होना डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा बढ़ते नगद नगद सहित पारदर्शिता और राजस्व चढ़ाव मुक्त अर्थतंत्र का औपचारिकीकरण खींचना राष्ट्रपति पौडेल प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाट वैदेशिक व्यापार में होना अनियमितता अनुसार नाकम होना न्यून बजारीकरण होना कराई का संग नियंत्रण करना राष्ट्रपति पौडेल बटविलबाट करदाता हुकम को सहजता प्रदान कर मूल्यांक वृद्धि कर फिहात लगायत सबको मेलिक कर फिर्ता करना प्रणाली होना स्वचालित हो समयाबद्ध बनाइना नीति में उल्लेख कहिएगा वित्तीय सुशासन कायम करबो आधुनिक डिजिटल अर्थतंत्र व्यवस्था जोड़ दिलक देखा ऐना आर्थिक वर्ष का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करके राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चिठी सर व्यापार हो तिमूर्त और खाना प्राथमिकता देना घोषणा करवाट विद्यमान श्रम निर्यात होना निर्भर अर्थतंत्र होना ज्ञान में आधारित सेवा डिजिटल व्यापार रिमोट वर्क को उच्च मूल्य को वृद्धि होना सेवामुखी अर्थतंत्र में रूपांतरण करना उल्लेख करवाट या तो लाख सरकार अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट गेट धन कानूनी मान्यता देना विदेशी मुद्रा आर्जन कर व्यवस्थापन हमारा समझ पाइना नीति लेवा सरकार स्टार्टअप नेपाल पोर्टल मार्फत एक प्रतिमा कंपनी दर्ता कर छूट बी पूंजी लगाए का सेवा प्रदान करना समय राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आर्थिक वर्ष 2083-84 का नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करते असीन अब एक प्लेटफॉर्म मार्फत कंपनी दर्ता से दिवपुरी समय देना सरकार जमेरा प्रत्याग्राह का औद्योगिक व्यवसाय परिवर्तन मार्फत स्टार्टअप कर्जा पर भाग जिला उसे कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में कंपनी दर्ता उद्योग विभाग में से लगानी स्वीकृत हो उद्योग दर्ता हुई थी महेन्द्र शाह नेतृत्व का सरकार 25 करोड़ रूपये में चुप्ता पूंजी अलग उद्योग पर्वत प्रदेश मार्फत का कार्य मार्फ दर्ता होना व्यवस्था करना ग्रीन मार्केट फीस सूचना प्रविधि पात्र कृषि उत्पादन केन्द्र तथा उत्पादन तथा नव वर्तमान आधारित औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्दै औद्योगिक पर्यटन सम्पूर्ण समेत सरकार नीतिगत आधार कार्यक्रममा उल्लेख गर्दा सरकार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राष्ट्रपति राष्ट्रिय रणनीति र उद्योग घोषणा गर्दै यी क्षेत्रको निर्यात प्रवर्धनका विशेष वित्तीय सहुलियत लगानी सहजीकरणका निम्ति आत्मसारमा पारी लगाइन। आगामा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रकाशन आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र कोविन्द आर्थिक वर्ष 2083-84 नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भारी लगाइन आग्रह प्रमुख कृषि प्रणालीका न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको पहिलो बैठक उहाँ समर्थन मूल्यका कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल बनाइटी रकम स्वास्थ्य बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलेन समेत पहिलोबाट विशिष्ट क्रेड उत्पादन क्षेत्र विकास रेखा कृषि उत्पादनमा उद्योग प्रशोधन बजार सेवा चुनौती वैदेशिक रोजगारमा सिक्नु जनशक्तिमा कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख सरकार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी सक्षम बनाएर समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख राष्ट्रिय समाचार सङ्घ वन क्षेत्र नगर भूमि सुकुम्बासी बस्ती हटाइन डिभिजन वन कार्यालय प्रत्याएको पत्र दिने सूचना फिर्ता लिएर माग्रति भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल सङ्घर्ष नगर समिति महासचिव नगर प्रमुख बहादुर खड्कामा पाँच दिन ज्ञापन पत्रको शैलीबाट आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र कोविन्द देशको अर्थतन्त्रमा आधुनिक पारदर्शी प्रगति मैत्री बनिने योजना आज साँझबाट कुमार सन्देश प्रभाव काल दुनिया 7 बजे नेपाली भाषा कुमार सन्देश लेखाइएपछि तब समग्रसँग सात कक्षा कुशलका प्राविधिक सुन्दरिया गोरी शङ्कर क्यामरामा अनुसँग मन कुमार विधायक रेडियो प्रभावले सुन्दरी चाहेको बाबा।

0: फादर उसके काम नहीं करना चाहती है, वो शिक्षा नहीं चाहता।
1: उसको पहले दिया उसे पहले सभी लेकर समझदार क्यों कर दिया राइट को दिखाना अधिकतम और न्यूनतम तक बन के सब उसके ठीक होने से लग रहा है। जिन्होंने कर दिया बड़ी बड़ी विषय की दिन को रात को बड़ी खेल दिया सुखा रहे उत्तर ही होता है जिनकी संख्या बढ़ सकी
2: दिन पानी पूरी तरह से तैयार हमारा धान तो सुख गए कि कैसे करनी था।

0: এটা এই পক্ষে পক্ষে স্থির হতে পারে তো
1: तोकिएको स्वास्थ्य पहुँचे कर्जा भुक्तानी गर्नु ऋणीको कारणी

0: करी सत रित खाना खाई व्यायाम शब्द करी
1: तुम्हारे पान हटी लगा से तू लगी चला भरा देह पर करी
0: आज निर्भय का जीवन रचरा निशा का रोग में से बाकी स्वस्थ जीवन अपनाई
1: रेडियो प्रभाव एफएम का सहकार्य स्वास्थ्य कार्य ने बढ़िया से दलित मजारी सुनील
2: मेरो
1: सन्तानले भोलि मेरो योजना अनुसार काम गरोस् भन्नुहुन्छ भने विगत 20 वर्षदेखि नै यस क्षेत्रमै परिवर्तनमा सफल भएको

शिक्षा सचिव बनो आज लगे रहा आज आज बैठक में की अपराध निकली वो अपराध में सरकों को सजाए भागीदारी बने डिविजन बोर्ड कार्यालय बढ़ गया फोन नंबर 084-24-156।